क्योंकि पिछले वैसे कल भी कोशिश थी भी तेरे गलबात करिए बट नहीं कर पाए क्योंकि साढ़े को जो साढ़े दोस्त से कुछ एक बारों आए थे तुम उन्होंने गलबात सुनी तो रमेश जी ने कल जिम्मेवारी पूरी निभाई थी अज का प्रोग्राम क्योंकि आप हूँ फिर तो शुरू कर जा रहे हैं फ्राइडे का प्रोग्राम तो फ्राइडे वाले दिन कोशिश होंगी है भी वो खबर के नाल कुछ गीत संगीत जोड़ा वो भी तुम सुनाइए

0: पर हम अभी खड़े हैं। इसी मैदान के गेट नंबर 6 के बाहर स्टेज लगी हुई है, उसी स्टेज पर सीजेपी के नेता और सामने कई सारे वॉलंटियर्स और आम नागरिक जमा हुए हैं। ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन कई लोगों के हाथ में पोस्टर्स है, कोई गाने गा रहे हैं, कोई अपनी भावनाओं को जता रहे हैं। इन सभी की एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस्तीफा दे, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब भारत ने वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की प्रोसेस, जिसे SIR कहा जा रहा है, वो शुरू हुई। SIR के साथ ही उस प्रक्रिया में कुछ खामियां जब सामने आई, तभी से इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग हो रही है, उसी मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट है।
1: जो लोग बिल्कुल मायूस हो गए थे और उनको ऐसा लगता था कि उनकी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, उनमें जो है अब नई ताकत आई है और उनको ऐसा लगता है कि देखिए हमारे में ये शक्ति है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात मानी जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे हाथ में,
2: जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सारा काराधारा ज्ञानेश कुमार पे ही जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार किसी ऊपर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और ये अपने मन से चुनाव जो हो रहा है वो नहीं करा रहे, वो किसी के इशारे पे करा रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है कि डेमोक्रेसी पे अटैक है, उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, जो होना चाहिए चुनाव इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से करना चाहिए।
3: हम ये चाहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग जो है वो उत्तरदायित्व ले, अकाउंटेबिलिटी ले। भारत के लोकशाही में चुनाव ये बहुत बड़ा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, तो वो फेयर होनी चाहिए सारे चुनाव, वो हमारी मांग है। दो इलेक्शन कमिश्नर से यह कहा है कि पिछले 10 महीने में उन्होंने 14 बार डिसअग्री किया है, तो इससे ये दिखता है कि किस तरीके से एक ही इंसान ने डोमिनेंस रखने की कोशिश की है संस्था के ऊपर। और सिर्फ रेजिग्नेशन से ये सवाल हल नहीं होंगे, ये भी हम जानते हैं, पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
4: गांधी, नेहरू और अम्बेडकर, इन तीनों के विचारों के कॉम्बिनेशन से हमको अभी देश को आगे ले जाना चाहिए। और उसमें अभी हमारी जो करंट ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो ज्ञानेश कुमार के इमीडिएट रेजिग्नेशन की हमारी डिमांड है। जल्द से जल्द रेजिग्नेशन देना चाहिए, पब्लिक का आप सपोर्ट देख सकती है इस आंदोलन को कितना है। अगर इतना पब्लिक बोल रहा है रेजिग्नेशन देना चाहिए तो उन्होंने इस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए रेजिग्नेशन इमीडिएटली हैंड ओवर कर देना।
1: जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात मानी जाती है, तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे हाथ में।
3: सिर्फ रेजिग्नेशन से ये सवाल हल नहीं होंगे, ये भी हम जानते हैं, पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
2: हमको लगता है कि डेमोक्रेसी पे अटैक है, उनको
5: ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ।

0: wo gegen das Gehäuse klopft.
1: स्विट्जरलैंड के बाजल में यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की तैयारियों के दौरान इस प्लेटफॉर्म का विचार आया। रोलान स्विस पब्लिक ब्रॉडकास्टर SRG की कम्युनिकेशन टीम का हिस्सा थे।
2: मोटो था यूनाइटेड बाय म्यूजिक और हम वाकई इस विचार को जीना चाहते थे। मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लाना, उन्हें भी जो संगीत नहीं सुन सकते उन्हें संगीत का अनुभव कराना।
1: इस वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म को पहली बार एक यूरोविजन डिस्को में पेश किया गया, जहां सुनने की समस्या से जूझने वालों के साथ ही आम लोगों ने भी इसे खूब पसंद किया। वापस संगीत मुकाबले में, यहां इस तकनीक को इंस्टॉल करने में आयोजकों को कई हजार स्विस फ्रैंक खर्च करने पड़े। हालांकि टीम कहती है कि ये पैसा सही जगह खर्च हुआ।
3: म्यूजिक सबके लिए है, मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है। हर भावना इससे जुड़ी होती है, तो फिर कोई क्यों म्यूजिक से जुदा रहे।
4: एक बधिर समुदाय के रूप में हमें अक्सर अलग छोड़ दिया जाता है। वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म के बिना कोई कॉन्सर्ट इतना दिलचस्प नहीं लगता। यहाँ हम बराबर के हिस्सेदार हैं।
1: कुल मिलाकर मकसद है लाइव म्यूजिक को ज्यादा सुलभ और ज्यादा समावेशी बनाना, ताकि और ज्यादा लोग साथ मिलकर इसका मजा ले सकें।
5: जिथे इस तरह म्यूजिक की गलबात चल रही है, थोड़ी जी पंजाबी म्यूजिक दे विच पिछे जी परम नाम की एक कुड़ी ने काफी लोगों के दिलों से राज किया, ते हुन उहदा नवा जिहड़ा गाना है वह परमेश वर्मा के नाल आया। सो सुनते हैं गीत,
6: जदों बीत ते आउंदा।

0: मानस पहुजा ते उना दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 5878321208।
1: बड़े सोचा च पए हो वीर जी, की गल होगी?
2: थक गए हैं घर लब लब के, कैलगरी च घर खरीदना तो हुन बड़ा ही औखा।
1: तुसी घर चंद्रमा ते लब दे होने, कैलगरी च नहीं। आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा।
2: कर लिया जी नोट, फोन नंबर 403-618-2112।
1: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल।
2: अच्छा जी, अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर?
1: जी हां, कल्ले घर नहीं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल, घर खरीदना होवे जां बेचना, प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112। ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ। मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
3: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
2: ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ।
4: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ।
4: ਲੈ ਦੱਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408।
2: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ।
5: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਲਈ ਜਾਇਓ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।
6: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਐਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
5: ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403-616-2445।
7: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
8: की होया?
7: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
8: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
2: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
3: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 403-870-1790 403-870-1790। स्टार मूविंग।